दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे असि तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा,

आमिर आया थारू वाजे पांच शब्दित कार सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।

जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे सुन के जम के दूत नाय तेरे छड़ जाहे पौजल विकमस गाह गुर सबनी पार

पावन बचन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज उस निरंकार दे नाम दी पावर दसदे ने। कहंदे ने मैं तत्ती तवी ते बह के विशुकर मनाया, खुशियां दे गीत गाए, ओदे पाणे नू खिड़े मत्थे मन्ने। पर गुरसिख होवे लखां सुख लै के हजारां सुख लै के भी परेशानियां नाल नजर आवे फिर गल बनदी नहीं। किनका मात्र साडे जीवन विच जरूर नाम दा प्रताप होवे, ओदी निशानी की है, सहजता बन जाती है। रब ना करे कदे कदे दुख भी आ जाए, वह भी फिर सुख लगन लग पैंदा है। जे सुख दे ता तुझे अराती, दुख भी तुझे तिहाई। जे सुख दे ता इत ही राजा, दुख विच भूख मोख। कहंदे ने भुख दे दुख दे सुख दे इक रस हो के जिंदगी जीना, न्यूट्रल रहना, सहज अवस्था विच रहना ते सदा उहदा शुकर करना, दुखां विच अरदास शुकराना करना। ते जे सुख बहुते आ जाण फिर भुलना नहीं, गवाचना नहीं, तां वी उहदा शुकराना करना। गुरु अर्जन देव जी दी पावन असीस लै लईए, जिन्हां ने शांतमई तपदी हुई तवी नूं भी एक कह के करके दिखा दिता भी नाम विच जो शीतलता है, पावर है, ठंड है, टिका है, वो किसी होर चीज विच नहीं।

पौड़ी नाए मने सुख उपजे ना मैं गत होई नाए मने पत पाई है हृदय हर सोई नाए मने भव जल लंगी है फिर बिघन ना हुई नाए मने पंथ प्रगटा ना मैं सब लोई नानक सतगुर मिले है।

कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछता। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आ। तत्काल यह मथुरा जगतारन को अवतार बनाए।

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी।

आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिस की सरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवर सियानप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवण जाना हो भी तेरा, नानक तिस जन कै पूजो सद पैरा। सलोक सात पुरख जिन जानिया, सत गुर तिस का नाओ। तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रत पाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आग्या मन में सहै। आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नेहकामे, तिस कहो त प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर कौ बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन मैं पार ब्रह्म, एकै आप नहीं कश भरम। सह सियाणप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर वडभागी पाईऐ। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पारसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे। सुन कर बचन करण आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जिह बाएक उस्तत अनेक, सात पुरख पूर्ण बबेक। काहू बोल न पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे बिनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक दे। मोह माया कै संग न लेप, मन में रखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रकाशे, नानक भरम मोह दुख तैते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भाओ चूका निर्भाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सातन कृपा तहरी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलहारी। सलोक साथ ना चालै, बिन भजन बिख्या सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उरत हारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ। ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगै परवान। मन प्रभु दो हर कै नाए, दैद सतावत आवै ठाए। ताको बिग न लागै कोए, जाकै हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सदा सदा
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਭਾਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸੁ।

समान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं।

जम है या भूत है या अछूत है, अलोक है या शोक है या कर्म है या परम है या जीत है या पीत है या बाह है अगा है अमान है निदान है,

नामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमात्थे समस्ति विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेतेवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो पूप पूपे नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दो उर्द अर्दं अगंग उग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग छेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश है अपेश है पुजंग प्रयाचंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वंग निर्णाते नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल तर्मंग लख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंत्व प्रसाद आदरूपनाद मूरत जौन पुरक पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकाल सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेक आद पुरख उदार मूरत जौन आद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए पहलो अनुराग नाम काम बहीन पेकता हूं न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सुदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव ना जानी जे वेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जानी के जेब तात मात ना जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिरे चत्र चक मानी पुरतीन लोक चौदह के विकह जग जाप पीजे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जेताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सुयम भव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपमेकनुस्तते पुरखवतूत गर्भगंजन सर्वपंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्मेक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपार।

अर्चन त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पानु देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपहन काम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड्य अंडंड बाड्य चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजं प्रयाचंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जानी चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाली चत्र चक्र वाकाली चत्र चक्र पासी चत्र चक्र वासी चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथि सदिशय दृश्य भगवती चंत्व प्रसाद कथते क्या छिज देश क्या भिज भेष क्या गंज कर्म क्या भंज भरम क्या भिज लुक क्या दित सुख के अवतूत वर्ण के बेभूत करण के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा अभरण के जगतंग कृति है के छत्रंग क्षत्रिय के बरमंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि देव है के आप अपे वह के चित्रंग वहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रहा कह के पाक वे वह के गय भूल गय वह के अफूल गुना है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फही में के अकल आलाम के साहिब कलाम के हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमीसल सलाम सलीकत मुदाम गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफ

मालिक है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, भूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंत है, अबंध है, भगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलीख है, अपीख है, अटाह है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपड़ छन्त्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग हंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छन्त्व प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वेपुते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध वेपुते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छन्त्व प्रसाद इजाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशर सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजिल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमीशुल अपीक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपांग है मद पार छन्त प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम हरबर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंडु अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंडु दिश विश अपांडु जल थल महंत दिश विश बेअंत अनुभव अनाश त्रितर तुरास आ जान बाहु इक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाथ खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जनाबात अंचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अंडट अपारु आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अणवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छन्त्व प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कलकंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी कृत है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं सात रूपे नमो परम तत्तं तत्तं स्वरूपे नमो

ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विपूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अभेद अनाम अकाम अगा अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागी न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजी अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय विगनी में हरियंग करियंग करिमुल रहीम में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पाव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते।

गाड़ी गडान के तोड़ नहार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत धुन पापन के भो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सबै अवलोक चपेंगे

अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हे सर्वसन सची पत अंत फसे जम फास भरेंगे। जी नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे भक्त ध्यान लगायो। नाथ फिरो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो। पास कियो बख्यान सुबैठ कह ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहूं सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हरवाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो।

सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबो। आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरू परिवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये। सब बैरन को आस संगरिये, पूर्ण हुए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊ। जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है। मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छाओ। श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा, राख लिहो मुहि रखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा। काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दै जच्छन उपजायो, आदंति कै अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने। काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा। प्रजा तर्क तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कबू। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार। आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाकू भेव न पावत बेदा, ताका कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। के बिसजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कई भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी। उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिखो वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरणी परे। तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है। ताकि काल नित नह है, रक्षा हुई ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला, कृपा दृढ़ तन जाहि निहरे हो। ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई। दुष्ट छाह छव सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल फास्ते ताहे उबारा, जिन रनाम तिहारू कहा दा।

दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावे सोई, दुख नत सह व्यापत कोई, अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, ओ जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्थ सहस गुण तीन कही जय, पाद्र सुदेष्ट मीरवारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो, श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं।

जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन अवसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक क्यों शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहाल आये वे संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कह हर बिनवर न कोई कह नानक नित्रंत से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई ये श्रवण हो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए साचा सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मंथन हरिया हुआ रसना रसमानी सचल कविणानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हुओ साचा सुनने नु पठाए हार जीव गुफा अंदर रख कै वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट की दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वार लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तैन एक रूप नाव नव निध इस दंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जीव गुफंद रखे वाजा पवन वजाया इह सचा सोहिला सचै कर गावो गावो ता सोहिला कर सचै जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जात दुभावे गुरमुख जिना बुझावे इह सच सभना का खसम है इस बख्शे सो जन पावे कह नानक सच सोहिला सच्चै घर गावे आनंद सुनो।

जिन गुर चरणी चित लाया फिर पाए अड़ा बालड़िए अंदन सहजे माती राम गुरमती मन आनंद भया तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मलाए अंदन रावे हर प्रभ अपना विच्छों आप गवाए गुरमत पाया सहज मलाया

रहाउ। नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान कुचारा, राम राय सो दूलह पायो अस बड भाग हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहे ब्याही चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रिए, सखी सहेली ननद गहेली

बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती, तब हों ना प्यारी, कहत कबीर पंच स्यों झगरा, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आसा हम घर सूत।

ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू न पार उतार चराए हूँ, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कासिक जुल्हा, बूझ मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर स्यों मोर त्याना। आसा जग जी

बस न देखै आग, काल फास न मुग्ध चेतै, कनिक कामनी लाग, कर विचार विकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, द्वितीय नाही कोई आसा।

जन्म अलिखै रहाउ। साच कतेब बखाने अल्लहू, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही कछ बौरे, जो दिल में खबर न हो।

मोहर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहुरिया रहा, तन पिरे कै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा, तन सुहागण जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म नया वै। आसा श्री कबीर जीओ के दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दिखाई। आसा पहली करूप कुजात कुलखनी, साहुरै पिय बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी। सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहा। कहो कबीर जब लहुरी आई, बटी का सुहाग टर्यो लहुरी संग पई अब मेरे।

दिन दस पांच बहु भले आई, घूंघट तेरो तौ पर साचै, हर गुण गाए कूदह अर नाचै, कहत

अंग न मूरू, पिंड परे तो प्रीत न तोरू, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम है सुकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनहो रे लोई।

राम पछाना। कहत कबीर कार गहतूरी, सूत सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीने कछु न हुवै, नाही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। रहाओ जल कै मज्जन जे गत हुवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे कोई नर, फिर जो नी आवै। मनो

तराई। दिन सुना रहन वेद नहीं शास्त्र, कहा बसै निरंकारा, कह कबीर नरति सहते आवो बावरिया संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा

माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ।

आन न हुई, मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर, केवल एक मुरारी आसा।

लख जी जल मैं होते बीठल पहला काय करू जतर जाऊं तद बीठल पहला महा आनंद।

प्रणवै पूर रहो तू सर्व मही आसा मन मेरु गज जिहबा मेरी काती मप मप काटो जम की फासी कहा करू जाती कहा करू पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रंगन रंगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करूं हर के गुण गाऊं आठ पहरे अपना खसम त्यावों

बिख नहीं छाटे, उदक माहे जैसे बग ध्यान मडे, काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देव बखाने, नामिक के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भाव सी, रामा भगत है चेती अले, अचिंत मन राख सी।

रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संत कै प्रसाद नामा हर पेटुलाओ। आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश पंच दुख असाध जाम है ताकि केतकास। माधु अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगा

संपत विपत पटल माया धन ता मैं मगन होत न तेरो जन प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन कह रविदास छूट बो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता।

रहाओ। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसहल बाना, बिनस गया जाए कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर्षो मोहे प्रीत बनयाई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु

जीरे रहाउ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनभांती, जन्म मरन फिर तानिया, जुगत जान हिरदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त पए।

जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दस द्वारा दे आहार अगन महराख है ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माही तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही पूरन परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखन कीट गुप्त हुए रहता

परी टाक्यम कुंजनिया मनहु मचंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग न आप वंजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए छैल लंघंदे पार गोरी मन धीरे आओ कंचन वन्ने पासे कलवत चीरे आओ।

बैस गया। कत्तक कुंजा चेत डाओ सावन बिजुलिया सियाले सुहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार विचारा ले मनो गडंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी।

गुजरी महल्ला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सुवार। ताको अंत न जाई लखना, आवत जात रह गुबार। प्रीतम क्यों बिसरै मेरे प्राण आधार। जाकी भगत करह जन पूरे, मुन जन सेवह गुरु विचार। रहाओ रब सस दीपक जाके त्रिभवन, एका ज्योत मेरा मुरार। गुरमुख होए सो अहनिस निर्मल, मन मुख रहन अंधार। सिद्ध समाद करै नित झगरा, दुहलोचन क्या हीरै। अंतर ज्योत शब्द धुन जागै, सतगुर झगर निबेरै। सुर नर नाथ बेअंत अजूनी, साचे महल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करहु निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, घर पहला एक ओंकार। सत गुर प्रसाद त्रिग इवेहा जीवना, जित हर प्रीत न पाए। जित कम हर विसरै, दूजे लगै जाए। ऐसा सतगुर सेवी है मना, जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै। अवर विसर सब जाए, हर सेती चित गह रहै। जरा का भौ न होवई, जीवन पद भी पाए। रहा गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया, वेख जैसी भगत बनी। आप सेती आप खाया, तामन निर्मल हुआ। ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाइए। जे लुचै सब कोए, कूड़े की पाल विच्चों निकलै। ता सदा सुख होए, नानक ऐसे सतगुर की क्या सेवक सेवा करे।

फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे न विसरे। हर हर करहे सदा मन चीत राव, हृदय जिनके कपट बसे। बारहु संत कहाही, तृष्णा मूल न चुकई, अंत गए पछुताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे, ताय अंतर की हो मैं कदे न जाय। जिस नर की दुबदा न जाय, धर्म राय तिस देश जाय। कर्म हुवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई। नानक विचो हो मैं मारे, ताहर भेटे सोई। गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत नहीं चलो। जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे। हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना। जो इच्छा है सो फल पा हुई, गुर प्रसादी हर रस पाव है। पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ। सतगुर भेटे ता पारस हुए, पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए, दिखिया देवे साच बुझाए।

ताए सो जी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए। ए मत तेरी थिर रहे, ता भरम विच हो जाए राव। हर चरण हृदय वसाए तू, किलविख हो वैनास। पंच भू आत्मा वस करहे, ता तीर्थ करहे निवास। मन मुख यो मन मुग्ध है, सोजी किछु न पाए। हर का नाम न बुझई, अंत गया पछुताए। इहो मन कासी सब तीर्थ, सिमरत सतगुर दिया बुझाए। अठसठ तीर्थ तिस संग रहे, जिन हर हृदय रिहा समाए। नानक सतगुर मिले हुक्म बुझया, एक वसिया मन आए। जो तुद भावे सब सच है, सच्चे रह समाए। गुजरी महला तीजा, तीजा एको नाम निदान। पंडित सुन सिख सच सोई, दूजे पाए जीता पढ़ै। पढ़त गुणत सदा दुख होई, हर चरणी तू लाग रहो। गुर शब्द सोची होई, हर रस रसना चाख तू। ता मन निर्मल होई रहाओ, सतगुर मिले मन।

जो समा हुकम होया सी समय दी समाप्ति है। सतगुरु सबना दिया हाजरियां दर प्रवान करन, एक जकारा वीरां नूं बेनती चढ़दी कला दा ते एक जकारा भैणां नूं करो कृपा सारे।

समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है। डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हों के उदम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका अपना सारे ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास विच आपां गाणा। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया केलै सगल जगत।

भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवारों के भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जा इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे रहमत करे, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

प्रोगन्ति अर्सोगन्ति जलजोगन्ति बहुपात पचा सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे माला गए ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कवहूं व्याप्त है उस महानुप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल व्यतीत होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण प्री सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी पुना पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण प्री गुर इतिहासिक इतिहास सरुण प्री दासल फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है, भुल चुक दिखी मां, गुरु बख्शिश करे रहमत करे तुहाडे साडे ते सभना ते, चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।